सब गुल हैं बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब तुम

रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। जब नजर आए वो सब्ज गुंबद, कह के सल्ले आला झूम जाए।